0: बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माय भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्षों के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक, अग्रिम पहुंच या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये विद्यार्थियों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में ना आने की सलाह दी है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। न्यू चंडीगढ़ में कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने भी 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह

0: 9 बजे शुरू होगा और एशियाई खेलों के लिए क्वालिफाई कर चुके सागर जगलान और किशोर काजल धोचक ने अपने अपने वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर मंगोलिया में आयोजित उलान बतोर ओपन कुश्ती टूर्नामेंट में भारत को 6 और पदक दिलाए। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान में 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आम्ही आकाशवाणीच्या परभणी केंद्रावरून बोलत आहोत। सकाळचे 6:05 झाली आहेत। प्रसारित करीत आहोत नमस्कार परभणी अंतर्गत विचारशलका हा कार्यक्रम। आज या कार्यक्रमात आपण ऐकणार आहोत दृष्टी याविषयी संजय पिंपळगावकर यांचे विचार।

0: और gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
2: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। एनटीए ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए यूपीआई समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी लंबी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
3: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
4: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि

0: मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें।

0: क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है। यह वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
2: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोजडेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोजडेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
3: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने तीसरी गोल दागकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
4: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। कप्तान गिल 103 रन और ऋषभ पंत अर्धशतक बनाकर क्रीज पर हैं। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। ये एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। उधर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कल इंग्लैंड और आयरलैंड के साथ होने वाली T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है।

0: श्रेयस अय्यर को सूर्य कुमार यादव की जगह टीम का कप्तान बनाया गया है। तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पालाकाड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथी एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मानसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की तीन महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल

ये आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर है। शेख तौफीक से इलाकाई खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। 353वां शिव राज्य अभिषेक दिन जोशोखरोश के साथ मनाया गया। रियासती हुकूमत ने मंदिर अराजी के खात्मे के कानून को फिलहाल मुअत्तल करने का किया फैसला। धाराशिव के सतीश साबड़े ने आलमी योगा चैंपियनशिप में जीता गोल्ड मेडल। भारत जापान को शिकस्त देकर मर्दों के अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में नाकाबिल शिकस्त। और जुनूब मगरबी मानसून की बारिशें नशीबी कोकन में दाखिल। महकुमा मौसमियात ने मानसून के 20 जून तक पूरी रियासत में दाखिल होने का जाहिर किया इम्कान। अब खबरें तफसील से। कल 353वां शिव राज्य अभिषेक दिन जोश व खरोश के साथ मनाया गया। रायगढ़ में मनाई गई मरकजी तकरीब में रियासत भर के शिव भक्तों ने महाराज को खिराज अकीदत पेश किया। युवराज संभाजी राजे छत्रपति ने इस एहसास का इजहार किया कि 300 साल बाद भी लोग इस जगह पर आते हैं, ये महाराज से अकीदत की अलामत है। नई मुंबई में बैनुल अक्वामी हवाई अड्डे के दरवाजे पर नसब छत्र

छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्मे की नकाब कुशाई वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कल शिव राज्य अभिषेक दिन के मौके पर की। मीडिया से बात करते हुए वजीर आला ने बताया कि नई मुंबई हवाई अड्डे का नाम अवामी कायद डीबी पाटिल के नाम से मंसूब करने से मुतालिक कार्रवाई जारी है और इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत के साथ नुमाइंदगी भी जारी है। नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे और नायब वजीर आला सुनीत्रा पवार ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज को खिराज अकीदत पेश किया और तमाम शिव भक्तों को शिव राज्यभिषेक दिन की मुबारकबाद दी। मराठवाड़ा में भी शिवराज्यभिषेक दिन जोशोखरोश के साथ मनाया गया। छत्रपति संभाजीनगर में शिव भक्तों की बड़ी भीड़ सुबह से ही क्रांति चौक पर जमा थी। शिव के नारों की आवाज़ से पूरा इलाका गूंज उठा। तमाम पार्टियों के लीडरान और अवामी नुमाइंदों ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्मे पर फूल चढ़ाए। नांदेड़ में जिला कलेक्टर राहुल करडीले और जिला परिषद की CEO मेघना कावली ने शिवाजी महाराज की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। उसके बाद गुड़ी खड़ी करके शिवराज्याभिषेक दिन मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस शाहजी उमाप और कई अफसरान और मुलाजिमीन मौजूद थे। परभनी जिले के पूर्णा तालुके के कातनेश्वर के हिंदयान स्पोर्ट्स साइंस अकेडमी में शिवराज्याभिषेक की तकरीब मनाई गई। इलाका नौजवान शिव भक्तों के नारों से गूंज उठा। छोटे बच्चों ने रिवायती पूजा और पालकी तकरीब मनाई और शिव दौर के मार्शल आर्ट का सनसनीखेज मुजाहरा भी पेश किया। कोल्हापुर, सतारा, धुलिया, पालघर, शोलापुर और रियासत के कई दीगर मकामात पर भी शिव की ताजपोशी की तकरीब जोशो खरोश के साथ मनाई गई। रियासती हुकूमत ने मजहबी मकामात लैंड अबोलिशन एक्ट को फिलहाल मुअत्तल करने का फैसला किया है। वजीर महसूल चंद्रशेखर बावनकुले ने कल नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इत्तला दी। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने यह फैसला उस कानून के हवाले से दायर एतराजात का नोटिस लेने के बाद लिया है जिससे हिंदू मजहबी और देवस्थान इदारों में उलझन पाई जाती है। बावनकुले ने यह भी कहा कि मजहबी मकामात को मजबूत करने का कानून मुकन्ना के आइंदा सरमाई इजलास में लाया जाएगा। कल दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी की क़यादत में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया जिसमें मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान से मुख्तलिफ इम्तिहानात और भर्ती के अमल में बेकायदगियों और बददियानती पर इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया गया। इस एहतजाज में हज़ारों मुजाहरीन जमा हुए। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने मुतालबा किया कि पेपर लीक और दीगर बेजाबतगियों के मामले में वज़रा की जिम्मेदारी तय की जाए और वजीर तालीम इस्तीफ़ा दें। समाजी कारकुन सोनम वागचुग, CPI लीडर एनी राजा और CPIM के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने भी इस एहतजाज में शिरकत की। दरियासना डिप्टी कलेक्टर ऑफ पुलिस ने मुत्तला किया है कि छत्रपति संभाजीनगर में दीपके की रिहायशगाह पर पुलिस के सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ियादत में मरकजी हुकूमत ने हाल ही में 12 साल मुकम्मल किए हैं। छत्रपति संभाजीनगर में खेलों के कोच डॉक्टर मकरन जोशी ने कहा कि इस अरसे के दौरान हुकूमत ने खेलों के शोबे में बुनियादी तब्दीलियां की हैं जिसकी वजह से खिलाड़ियों को हौसला मिल रहा है और खेलों के शोबे ने भी अच्छे दिन देखे हैं। ये खबरें आकाशवाणी छत्रपति संभाजीनगर से नशर की जा रही हैं। लातूर तालुके के खंडापुर में अखंड हरिनाम हफ्ते में मुबैना माली बेजाब्तगियों के मामले में कल मरकजी मुंतजिम और कुछ दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दावा किया गया है कि इस तकरीब के लिए 5,98,00,000 रुपए से ज़ायद जमा हुए हैं जिनमें से तकरीबन 3,65,00,000 रुपए का हिसाब नहीं है। पुलिस इस मामले में मजीद तफ्तीश कर रही है। रुकने पार्लियामान बजरंग सोनौने ने मुतालबा किया है कि बीड जिले के परली के नौजवान तौहीद कैराती खान पठान के कत्ल के तमाम मुलजिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार करके सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने हुकूमत और इंतजामिया से तहरीरी ख़त में ये मुतालबा भी किया है कि इस केस की समाअत फास्ट ट्रैक अदालत में की जाए और मुतासर ख़ानदान को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। अहमदाबाद में वर्ल्ड चैम्पियनशिप योगासना मुकाबले में धाराशिव ज़िले के योगा एथलीट सतीश साबड़े ने ट्विस्टिंग ज़ुमरे में इनफरादी गोल्ड मेडल जीता और आलमी चैम्पियन बन गए। साबड़े जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम कर रहे हैं आलमी योगासना मुकाबले में भारत के लिए तलाई तमगा जीतने वाले पहले योगा खिलाड़ी हैं। भारत ने कल मर्दों के अंडर 18 एशिया

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। इस खिदमत है सुबगाही प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के तहत लीजिए सामने अब सुनिए शब्द।

0: वो पौष्टिकता लाएगा और शरीर हमारा पुष्ट होगा। अगर हम बात करें तो खाने की ताजगी पर भी इसमें एक पॉइंट लिया जा सकता है
1: फ्रेश
0: कि
1: फूड्स एंड
0: खाना कितना
1: वेजिटेबल्स
0: हम ताजा खाना खा रहे हैं उसका हमारे शरीर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
1: स्पेशली इट्स समर टाइम सो वी
0: बिल्कुल,
1: हैव टू टेक
0: अब आपने
1: ड्यू
0: समर की बात
1: केयर।
0: की तो इसी कड़ी में हम देख सकते हैं कि मौसम के अनुसार खाना भी हमको
1: यस सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स
0: सीजनल
1: शुड बी
0: फ्रूट्स
1: इंक्लूडेड इन योर डाइट।
0: बिल्कुल मौसमी फल और मौसमी सब्जियां जो हम खाएंगे तो वो हमारे शरीर में मुझे लगता है कि ज्यादा पौष्टिकता लेकर
1: इट्स
0: आएंगी।
1: एक्चुअली ट्रू।
0: बिल्कुल, और इसके अलावा श्रोताओं सबसे खास बात कि खाना जितना हो सके अपने घर का खाएं।
1: सो नाउ what should we do? We should actually take our listeners way back in time. In 1893, Mahatma Gandhi, who was practicing law in South Africa, faced racial discrimination and was denied entry to a train. So he was actually traveling from Durban to Pretoria with a first-class ticket. Despite having a valid ticket, a European passenger demanded that authorities move Mahatma Gandhi to a different compartment because of his race. So Gandhiji refused, asserting his right to remain in the first class. So consequently, he was forcibly thrown out from the train at Pietermaritzburg station. So this incident, it is widely seen as a catalyst that ignited Mahatma Gandhi's dedication to civil rights and justice. And this paved the way for his future leadership in both South Africa and India.
0: बिल्कुल, और 7 जून 1929 को आज ही के दिन वेटिकन सिटी एक संप्रभु देश भी बना था। वर्ष 1975 में पहले विश्व कप का पहला मैच भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड स्टेडियम में आज ही के दिन खेला गया था, और इसके 4 बरस बाद यानी कि साल 1979 में इस दिन भारत का दूसरा उपग्रह भास्कर प्रथम सोवियत संघ के बियर्स लेक से प्रक्षेपित किया गया। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के आखिरी सेगमेंट की ओर, जहां हम याद करेंगे उन जानी मानी हस्तियों को जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है। आज पुण्यतिथि है भारतीय भौतिक विज्ञानी और चेन्नई में गणितीय विज्ञान संस्थान के संस्थापक अल्लादी रामकृष्णन की। उन्होंने स्टैटिक प्रक्रिया, कण भौतिकी, मैट्रिक्स के बीज गणित, सापेक्षता के विशेष सिद्धांत और क्वांटम मैकेनिक्स में योगदान दिया। उत्पाद दर्शन पर उनका काम कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी में भी दिखाई दिया है। और आज ही पुण्यतिथि है नटराज रामकृष्णन की। वे भारतीय नृत्य शैली में पारंगत थे। नटराज रामकृष्णन आंध्र प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष रहे। वे संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश और दुनिया भर में शास्त्रीय नृत्य को बढ़ावा दिया। उन्होंने 40 से अधिक पुस्तकों का लेखन भी संपन्न किया। नृत्य की कला में नटराज रामकृष्णन के योगदान को व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। मात्र 18 वर्ष की उम्र में ही उन्हें मराठा के तत्कालीन शासक द्वारा नागपुर में नटराज की उपाधि दी गई थी। नटराज रामकृष्णन को लगभग 700 वर्ष पुरानी नृत्य शैली पेरिनी शिव तांडवम को पुनर्जीवित करने के लिए जाना जाता है। वर्ष 1992 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब हम उन्हें याद कर रहे हैं जो कुछ गिने चुने लेखकों में से एक थे जिन्होंने मोहब्बत, शांति और मानवता का पैगाम दिया। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और उर्दू लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास की। आज उनकी जयंती है। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने अलीगढ़ ओपिनियन शुरू किया। अब्बास ने अपनी कई फिल्मों और लेखों के लिए पटकथाएं भी लिखी। ख्वाजा ने राज कपूर की आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, बॉबी और हिना जैसी फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी। आइए सुनते हैं फिल्म हिना से ये कुछ गीत। अब्बास साहब ने राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली की शुरुआत और अंत भी लिखा था। आइए सुनते हैं इस फिल्म का ये गीत।
1: Telling you about Khwaja Ahmed Abbas, a versatile writer. Well, his work spans 74 books, 90 short stories as well, around 3,000 journalistic articles and, well, a few plays as well. And, well, he's not just a jack of all trades, but king of them all too.
2: Sameen, abhi aap sun rahe the program Aaj Savere. Yeh Akashvani ki Urdu service hai. सुबह के 9:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नष्ट की जाएंगी।
3: हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। वजीर दाखला अमित शाह ने माली लेन देन, इमारतों की तामीर और बैन अलावा सरहदों पर जायदादों के खरीदो फरोख पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी ने नीट यूजी 2026 के दोबारा हो रहे

बारे में भी अपने अपने नुक्ता नजर पेश किए। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने साल 2015 के जलजले के बाद तामीर नौ प्रोग्राम के तहत 72 सेहत मराकज और 12 सकाफती विरसों से मुतालिक प्रोजेक्ट्स नेपाल को सौंपे हैं। नेपाल के अपने हमनसब शिशिर खनाल के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने वर्चुअल तरीके से इन मराकज और प्रोजेक्ट्स को नेपाल के हवाले किया। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार जाति तरसील

0: शिशिर खनाल के साथ नई दिल्ली में मुलाकात के बाद उन्होंने वर्चुअल तरीके से इन मराकज और प्रोजेक्ट्स को नेपाल के हवाले किया। दोनों रहनुमाओं ने सरहद पार जाति तरसील रिजर्व को आसान बनाने के लिए मुश्तरक तौर पर यूपीआई इंडिया और नेपाल के यूपीआई को जोड़ने का आगाज किया। दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल इंडिया भाषिनी और काठमांडू यूनिवर्सिटी के दरमियान कौमी डिजिटल बुनियादी ढांचे की मुश्तरक तकलीफ से मुतालिक मुफाहमतनामे का तबादला किया। जनाब खनाल ने के साथ अपनी मुलाकात के दौरान वजीर खारजा डॉक्टर अजय शंकर ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी तवील और खुली सरहद पर सलामती को बरकरार रखने के लिए करीबी ताउन से काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क जरूरत पड़ने पर हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे। इस मौके पर जनाब शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे अहम साझेदार है और नेपाल भारत को अव्वलीन तरजीह देता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत महज दो मुल्क नहीं बल्कि शानदार कदीम तहजीब के फरीक भी हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इंडोनेशिया के वजीर खारजा सुगुइनो नई दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां वो वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर के साथ 8वीं भारत इंडोनेशिया मुश्तरक कमीशन की मुश्तरक सदारत करेंगे। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन IATA ने कहा है कि भारत एशिया बैरुटकाइल खत्ते में हवाई ट्रैफिक की तरक्की की दास्तान में अहम रोल निभा रहा है। IATA के मुताबिक एशिया बैरुटकाइल खत्ते में साल 2044 तक हवाई मुसाफरों की तादाद बढ़कर 4.1 अरब हो जाएगी। एशिया बैरुटकाइल के लिए IATA के इलाकाई नायब सदर शेल्डन ही ने कल ब्राजील के शहर में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि गुज़िश्ता बरसों में खित्ते की हवाबाजी की तरक्की की दास्तान भारत का ताउन काफी अहम रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में तेजी से उभरते हुए शहरी हवाबाजी के घरेलू बाजारों में से एक है। जनाब ही ने मजीद कहा कि गुज़िश्ता 5 साल से 10 साल के दौरान एशिया बैरुटकाइल खित्ता काफी मजबूत रहा है और अगली एक दिहाई के दौरान भी इसके मुस्तहकम बनने रहने का इम्कान है। 14.2 किलोग्राम वाले खाना पकाने वाले घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 29 रुपए का इजाफा कर दिया गया है। ये इजाफा आज से नाफिज हो गया है। दिल्ली में घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत अब 942 रुपए होगी, जबकि इससे पहले ये 913 रुपए थी। भारतीय महकमा मौसमियात ने साहिली कर्नाटक, केरलम और माहे के मुख्तलिफ मुकामात पर आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। इसके अलावा शुमाल मशरकी भारत, अंडमान निकोबार, जजायर, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, जैली हिमालयाई, मगरबी बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी आज दिन में बारिश का इम्कान है। फुटबॉल में भारत ने खवातीन की सैफ चैंपियनशिप 2026 का टाइटल जीत लिया है। भारत ने बांग्लादेश को 1-3 गोल से हरा दिया। इस तरह भारत ने 6वीं मरतबा ये चैंपियनशिप जीती है। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने माली लेन देन, इमारतों की तामीर और बैन अलावामी सरहदों पर जायदाद के खरीदो फरोख्त पर कड़ी नजर रखने की जरूरत पर जोर दिया है। कौमी जांच एजेंसी नीट UG 2026 के दोबारा हो रहे इम्तहान का पर्चा लीक होने के दावों को मुस्तरद करते हुए इसे गलत करार दिया है। मगरबी बंगाल हुकूमत रियासत में अहम मजहब मकाम पर सहूलतों को बढ़ाने की गरज से बड़े तरक्याती इकदाम करेगी। भारत ने सेहत से मुतालिक 72 सहूलतें और 12 सकाफती विरासती प्रोजेक्ट नेपाल को सौंपी हैं। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: आकाशवाणीच्या परभणी केंद्राचं प्रसारण आपण ऐकत आहात FM बँडच्या 102 MHz तसंच न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवर। आमची यानंतरची उद्घोषणा लगेचच।
2: शेतकऱ्यांना लक्ष द्या, वेळ जाऊ देऊ नका। रवी सीडचा लोटेचे सोयाबीन बियाणे, उन्नती समृद्धी भरघोस उत्पादनाची खात्री, मर्यादित साठा, आजच घ्या।
1: श्रोते हो, प्रसारित करीत आहोत ग्राहक केंद्रित प्रायोजित कार्यक्रम। जितेंद्र घोडके सराफ।

0: वनिता मंडळ महिलांसाठी कार्यक्रम आकाशवाणीच्या मुंबई केंद्रावरून आपण ऐकत होता. निर्मिती होते आकाशवाणी कोल्हापूर केंद्राची. ठीक एक वाजता दिल्ली केंद्र.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा. विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है. उन्होंने कहा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. विदेश मंत्री ने इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो के साथ नई दिल्ली में भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक की सह अध्यक्षता की. उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाया है.
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं. हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं. मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे.
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं. घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है. दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी. तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है. टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की है. पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग की प्रमुख चिंतकयाला विजय को उम्मीदवार बनाया है. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे. ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है. कक्षा 12वीं की परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा. बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले

0: अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में समुद्री जहाजों पर दागे गए दो ईरानी ड्रोन्स को रोका और नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान के अनुसार अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने को तैयार हैं। ईरान ने कल कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पुरुष क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन ताजा समाचार मिलने तक भारत ने पहली पारी में 121वें ओवर में 8 विकेट पर 541 रन बना लिए हैं और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी दुपारचे 1:05 झालेली आहेत। प्रसारित करत आहोत चित्रपट संगीताचा कार्यक्रम गीत बहार। सुरुवातीला ऐकूया सुमन कल्याणपूर यांनी गायलेलं एकटी या चित्रपटातलं ग.दि. माडगुळकर यांचं गीत, संगीत सुधीर फडके यांचं।

0: थोड्याच वेळात दिल्ली केंद्रावरून हिंदीतून बातम्या.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीष शर्मा. मुख्य समाचार. भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी. व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा. गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन. मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया. और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की. और अब समाचार विस्तार से. भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं. डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है. उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है.
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं. हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं. मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे.
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी.
3: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं. समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं. जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई. वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया. दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है. अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है. गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया.
4: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया. श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की

0: जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कैनेडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया।

0: अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केशम द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातिये क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। ये दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। यह मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6वें ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने

0: ने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्ची में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी मुंबई केंद्र अस्मिता वाहिनी दुपार 2:30 आहेत। कर्नाटक संगीताच्या कार्यक्रमात ऐकूया अनुपमा देवराजन यांचं कर्नाटक शैलीत गायन। रागभोगी वाचस्पती आणि रागमालिका रचना खंडचापू आणि आदितालात निबद्ध आहेत। त्यांना व्हायोलिन साथ सतीश शेषाद्री मृदुंगम साथ आदित्य राजगोपालन यांनी केलेली आहे। या रचना आहेत NS रामचंद्रन आणि महाराजा स्वाती तिरुनाल यांच्या। ऐकूया अनुपमा देवराजन यांचं कर्नाटक शैलीत गायन। राग अभोगी राग वाचस्पती आणि रागमालिका।

परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच लोगों के संबंधों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर और सुगियानो ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति का स्वागत किया। इससे पहले सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत हुई है। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक

0: सेवाओं पर, वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों में संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जाँच करने का भी निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में अब 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा की बैठक की। अध्यक्षता करते हुए पदभार ग्रहण करने के बाद यह उत्तर बंगाल क्षेत्र की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। उपभोक्ता कार्य विभाग ने ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थन पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। न्यू चंडीगढ़ में एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान ने भारत के पहली पारी में 564 रन के जवाब में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत की ओर से मानव सुथार ने 3 विकेट लिए। इससे पहले भारत ने 8 विकेट पर 564 रन बनाकर पहली पारी समाप्त घोषित कर दी थी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इन स्थानों पर अगले 4 दिनों तक लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by V.C. Pramod. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, they reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. Both sides discussed ways to further strengthen cooperation in a wider range of areas, including political affairs, defense and security, maritime cooperation, trade and investment, pharmaceuticals and healthcare, digital technology, energy, connectivity, space, education, consular matters, culture and people-to-people exchanges. Dr. Jayashankar and Mr. Sugiono welcomed the growing momentum in bilateral ties and agreed to hold the next Joint Commission meeting at a mutually convenient date in the near future. West Bengal Women and Child Development and Social Welfare Minister

0: पूर्वानुमानं प्रकटितम्। उत्तर मध्य भारतस्य केषुचित् भागेषु उष्णतरंगस्य स्थितिः अपि अनुवर्तते। एतदतिरिच्य आगामिषु चतुर्षु दिनेषु दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम राजस्थान, तटीय आंध्र प्रदेश इत्येतेषु प्रदेशेषु उष्णतरंगस्य स्थितिः भविष्यति इति ऋतुविज्ञान विभागेन पूर्वानुमानितम्। उत्तर पश्चिम भारते, मध्य भारते च आगामिषु त्रिषु दिनेषु अधिकतमं तापमानं 2-6 डिग्री सेल्सियस पर्यन्तं भवितुं शक्नोति। तेलुगु देशम पार्टी इति दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षेण एन चंद्रबाबू नायडू वर्येण आगामी जून मासस्य 18 दिनांके राज्यसभा निर्वाचनाय स्वकीयस्य दलस्य 3 प्रत्याशिनः घोषिताः। तेषु उद्योगपतिः सना सतीशः, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्णः तथा टीडीपी सामाजिक माध्यम प्रकोष्ठस्य प्रमुखः चिंतकयाला विजयः च सन्ति। अमेरिका ईरान देशयो मध्ये संघर्षस्य शतदिनानि जातानि। फरवरी मासस्य अन्ते ईरान देशे अमेरिका इजराइल देशाभ्यां कृतैः आक्रमणैः आरब्धायं संघर्षः अधुना विस्तृत क्षेत्रीय संकटे परिणतः जातः। अस्मात् संघर्षात् होर्मुज्जल सन्धि मध्ये सुरक्षित समुद्रयान परिवहनाय संकटम् उत्पन्नम्। अधुना लेबनान देशे पुनः संघर्षयुता स्थिति उत्पन्ना जाता। केन्द्रीय युव कार्याणां क्रीडा मंत्री डॉक्टर मानसुख मांडविय अद्य प्रातः काले नवदिल्ली नगरे आयोजितस्य फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति अभियानस्य 77वें संस्करणे सहभागित्वं कृतवान्। वार्ताहरैः सह वार्तालापं कुर्वन् असौ अवदत् यत् साइकिल इति द्विचक्रिकायानस्य संचालनात् पृथ्वी स्वच्छा भवति तथा च यातायात सम्बद्धस्य अवरोधस्य गंभीर समस्यायाः समाधानम् अपि प्राप्यते।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान, तो क्यों न हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: अभिनेता विक्रांत मैसी अपि फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल इति कार्यक्रमे सम्मिलितवान्। एतद् अभियानम् अद्वितीयम् इति वर्णितवान्। सः अवदत् यत् एषः उपक्रमः अधुना जनान्दोलन रूपं धारयति। अद्य विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसः आचर्यते। अस्य वर्षस्य विश्व खाद्य सुरक्षा दिवसस्य विषयः अस्ति समाह्वानात् समाधान पर्यन्तं, सर्वत्र सुरक्षितं भोजनम्। अयं दिवसः खाद्य सुरक्षायाः अधिकार रूपेण तथा सामूहिक दायित्व रूपेण जागरूकतां वर्धयितुं सशक्तं अवसरं प्रददाति। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा स्वस्थ भविष्याय सुरक्षित स्वच्छ भोजनाय च भारत प्रशासनिक प्रतिबद्धतां पुनरुच्चारितवान्। अस्मिन् अवसरे असौ सामाजिक माध्यमेषु प्रकाशिते सन्देशे उत्तमं आहारं स्वीकर्तुं तथा च आत्मनिर्भर भारतस्य निर्माणे योगदानं दातुं जनेभ्यः आहूतवान्। नवचंडीगढ़ नगरे आयुक्षमाणे निकष क्रिकेट क्रीडायाः द्वितीये दिने भारतीय दलेन अफगानिस्तान दलस्य सम्मुखे अष्ट क्रीडकानां हानि पुरस्सरं 64.5 धावनांकान् समर्ज्य प्रथमा चक्रीया क्रीडा घोषिता। भारतीय मल्ल क्रीडकाः मंगोलियायाः उलान बटार ओपन क्रीडायां भारतस्य कृते 2 स्वर्ण पदके 2 कांस्य पदके च विजितवन्तः। इति वार्ताः।
2: श्रोते हो, प्रसार भारतीच्या वेव्ज ओटीटी प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्झवर ही आहे आकाशवाणी मुंबई केंद्राची अस्मिता वाहिनी। संध्याकाळचे 6:30 वाजले आहेत। आता प्रसारित करीत आहोत बाल दोस्तांसाठी कार्यक्रम गमत जम्मत।

0: ने जन्म लिया। शिव जी ने गुटकांश वसुधा को भेंट दिया। हर घर में उत्सव, हर पत्थर में उत्सव, हर पर्वत पर उत्सव, सर्वत्र उत्सव। सबसे पहले से आया उस पे आदि शक्ति का पड़ा, सामने एक तेजस्वी शक्ति पीठ था खड़ा। जैसे खड़ी माँ काली पैरों में संसार लिए, खड़ी कुछ जगदम्बा जिजाओं का अवतार लिए। फतवा कब का पहुंच चुका शिवाजी राजे तब था, पुत्र रत्न देखे बिन बाप कैसे रह सकता। ऐसा कोई शस्त्र नहीं जो खाओ का मल समझ सके, ऐसा कोई शास्त्र नहीं जो बाप का दिल समझ सके। भाई बन राजे निकले हिंद वृक्ष की पर्ण की ओर, जैसे निकले सूर्योदय रथ पे बैठे कर्ण की ओर। अपना ही अंश देख आके वह सेक रहे, खुद का प्रतिम्ब राज हाथों में देख रहे। तेजस्वी मुखमंडल माथे पर शिवगंध डोले, खुंगराले बाल जैसे जटा में भुजंग खेले।
1: वाह मल्हार, खूपच छान।
0: थैंक यू।
1: खूप सुंदर तू हे म्हटलंस काव्य, आणि मला वाटतं आपले जे बालमित्र आहेत त्यांना सुद्धा हे खूप आवडलं असणार। बालमित्रांनो, खरोखरच एवढ्या लहान वयात इतकी मोठी कला जोपासणं ही खूप अभिमानाची गोष्ट आहे। मल्हार, तुझ्या पुढील वाटचालीसाठी आमच्या बालमित्रांतर्फे आणि आकाशवाणीतर्फे तुला खूप खूप शुभेच्छा।
0: थँक्यू।
1: खूप मोठा हो आणि या क्षेत्रात आणखीन मोठं नाव कमाव। आमच्याशी इतक्या मनमोकळ्या गप्पा मारल्यास, इतकी छान गाणी वगैरे म्हणून दाखवलीस, गारद म्हणून दाखवलीस, त्याबद्दल मनापासून आभार।
0: थँक्यू।

0: प्राजक्ता सावरकर शिंदे यांनी गायलेल्या या गझलसोबतच हिंदी सुगम संगीताचा कार्यक्रम श्रोतेहो समाप्त झाला. हा कार्यक्रम आपण ऐकलात आकाशवाणी मुंबई केंद्राच्या अस्मिता वाहिनीवरून, तसंच AIR मराठी DTH उपग्रह वाहिनी आणि न्यूज ऑन AIR या मोबाईल ॲपवरून. श्रोतेहो, यानंतर ठीक 8:45 समाचार संध्या हे हिंदीतलं बातमीपत्र, 9 News@9 हे इंग्रजी बातमीपत्र, 9:15 स्पॉटलाईट, 9:30 रूपकोंका अखिल भारतीय कार्यक्रम आणि रात्री 10 अखिल भारतीय संगीतकार रविवासरीय कार्यक्रम. हे सर्व कार्यक्रम आकाशवाणीच्या दिल्ली केंद्रावरून प्रसारित होतील. आम्ही ते सहक्षेपित करीत आहोत.
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती. भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न. रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा. पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी. दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा. उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन. पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 और 2 पदक जीते. और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे. अब समाचार विस्तार से. भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई. विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की. बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
2: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की. इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल, ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं. दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की. साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया. डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया. इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय

0: प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगरपालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज

0: योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गाँव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मानसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मानसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधु दुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
3: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
0: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के

0: फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने एक एक सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रेवा ने माया चालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। मेजर बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में एंगेजमेंट टीम कमांडर और लैंगिक मामलों की प्रमुख अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक डॉ. JPS डबास के साथ खेत बचाव अभियान, उर्वरकों के सीमित उपयोग और मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए नंबर है 0112331081। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। #AskAIR के साथ एक्स पर भी सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashwani and I'm VC Pramod with the news at 9. The headlines. India and Indonesia held joint commission meeting in New Delhi. Discuss comprehensive strategic partnership across key sectors including defense, trade, energy and connectivity. West Bengal government to develop Darjeeling, Mirik, Kursiong, Kalimpong and Siliguri as Himalayan cities to boost tourism and regional economy. Southwest monsoon further advances into west central and entire northeast Bay of Bengal. Indian wrestlers win 2 gold and 2 bronze in men's freestyle category at Ulaanbaatar Open in Mongolia. And in cricket, Afghanistan trails against India by 451 runs in first innings at stumps on second day of one-off test in New Chandigarh. The 8th India-Indonesia Joint Commission meeting was held in New Delhi today. External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar and his Indonesian counterpart Sugiono co-chaired the meeting. During the meeting, the two leaders reviewed the entire spectrum of bilateral relations under their comprehensive strategic partnership. More from our correspondent.
2: During the meeting, India and Indonesia discussed avenues for further strengthening cooperation in various fields including political, defense and security, maritime, trade and investment, pharma and healthcare, digital, energy, connectivity, space, education, consular and cultural domains and people-to-people exchanges. Both leaders also exchanged views on regional and global developments of mutual interest. They also reaffirmed their commitment to closer cooperation and coordination in regional and multilateral forums. fora. Dr. Jaishankar and Mr. Sugiono welcomed the upward and growing trajectory of bilateral relations. In his opening remarks, Dr. Jaishankar said that the joint commission between both nations is convening after a gap of 4 years, and it is essential to acknowledge that significant advancements in bilateral relations have been made during this time. He said India-Indonesia celebrated the 75 years of

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है। आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला। आलेख आनंद श्रीवास्तव का है, प्रस्तुत करता है नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला।

0: की बात है जब भारत के घरों में लिविंग रूम नहीं हुआ करते थे और टीवी की चमचमाती स्क्रीन तो कल्पना से भी परे थी। लेकिन तब भी देश के सुदूर कोने में बैठा एक किसान, सीमा पर तैनात एक सैनिक और गली में दौड़ता एक बच्चा, सब एक साथ एक ही पल में एक ही धड़कन से जुड़े थे।
1: जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास आकाशवाणी थी। स्वतंत्रता के सपनों से लेकर नए भारत की उपलब्धियों तक आकाशवाणी ने हर महत्वपूर्ण पल को देश तक पहुंचाया है।
2: Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom.
0: दौर बदला, तकनीक बदली और बदल गया सूचनाओं का संसार। लेकिन इस बदलते हिंदुस्तान में जो नहीं बदला वो है देश की एक बुनियादी धड़कन, एक ऐसी आवाज जिसने सुबह की पहली चाय से लेकर रात के सन्नाटे तक हर भारतीय के घर में दस्तक दी।
3: ये आकाशवाणी है। अब आप रामानुज प्रसाद सिंह से समाचार सुनिए।
1: क्या आपने कभी सोचा है कि देश दुनिया के कोने कोने से आप तक पहुंचने वाले इन सटीक समाचारों के पीछे कितनी बड़ी तपस्या होती है? आकाशवाणी समाचार की रीढ़ हैं इसके दो सबसे बड़े पावर हाउस, जीएनआर यानी जनरल न्यूज रूम और एचएनआर यानी हिंदी न्यूज रूम।
0: सुबह का समाचार प्रभात हो, दोपहर समाचार हो या फिर दिन भर की खबरों को समेटे समाचार संध्या,

0: मेजर हिंदी और 3 मेजर अंग्रेजी बुलेटिन को तैयार करने के लिए 2400 घंटे डेस्क पर शब्दों को तराशा जाता है, तथ्यों को परखा जाता है, क्योंकि यहाँ रफ्तार से ज्यादा जिम्मेदारी मायने रखती है। आकाशवाणी समाचार के वरिष्ठ सलाहकार उमेश चतुर्वेदी,
1: आकाशवाणी चूंकि सार्वजनिक प्रसारक है तो किसी निजी मीडिया प्लेटफॉर्म, मीडिया आउटलेट्स या मीडिया संस्थान की तुलना में इसकी भूमिका कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण और कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। इसलिए यहाँ इस बात पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो भी हम सूचना दें वो सही हो और सटीक हो, उसकी तथ्यात्मकता पर, उसकी प्रामाणिकता पर कोई सवाल न उठे। तो इसलिए जब तक कोई न्यूज, कोई भी समाचार विश्वस्त सूत्रों से सही न साबित हो जाए या न मान लिया जाए कि ये बिल्कुल सही सूचना है, सही जानकारी है, सही समाचार है, तो उसे प्रसारित करने के लिए सिस्टम में नहीं डाला जाता। जैसे मैं हाल ही में अहमदाबाद में जो विमान दुर्घटना हुई उसका उदाहरण देते हुए कहूंगा, मैं उस समय हिंदी न्यूज रूम में खुद था तो उस समाचार को देने में हमने देर नहीं लगाई, लेकिन उस तेजी में भी हमने इस बात का ध्यान रखा कि हम जिस सूचना को देने जा रहे हैं अपने जो देश के, बल्कि अब तो इंटरनेट के मार्फत पूरी दुनिया में हमारे श्रोता हैं, एक भी गलत सूचना न जाए। 2400 घंटे यहाँ डेस्क काम करता रहता है, रिपोर्टर भी काम करते रहते हैं जो हमारे देश भर में संवाददाता फैले हुए हैं, और वो संवाददाता भी इस बात को ध्यान में रखते हैं कि किसी भी कीमत पर गलत या भ्रामक समाचार या सूचना किसी भी समाचार केंद्र पर न पहुंच पाए। और एक चीज और है कि सबसे पुराना इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अब भारत का सार्वजनिक प्रसारक होने के नाते आकाशवाणी ने एक व्यवस्था कर रखी है, बहुत सारे शब्दों को इसने डीबार मतलब उनसे परहेज किया है। एक शब्दों के लिए शब्दावली अलग से तैयार की गई है आकाशवाणी के लिए, और चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे देसी भाषाओं के प्रसारण के लिए जो शब्दावली है या बोलियों के लिए, सबके लिए डूज और डोंट मतलब क्या करें और क्या ना करें, किसकी बाकायदा शब्दावली तैयार करके रखी गई है, सूची बना करके रखी गई है। और न्यूज में कुछ खास तरह से इस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, इसलिए कई बार जो बाहरी व्यक्ति, जो सामान्य पत्रकार हो, अगर आकाशवाणी के अंग्रेजी या हिंदी न्यूज रूम में आ जाए या किसी और भाषा के न्यूज रूम में आ जाए, समाचार कक्ष में आ जाए, तो उसको देख कर ताज्जुब भी होगा कि कई बार कुछ शब्दों पर बहस होती है, हो सकता है कि उसमें कुछ देर हो जाए प्रसारण में, लेकिन गलत शब्द, गलत तथ्य न जा सके इसका पूरा ख्याल रखा जाता है।
2: आज टेलीविजन और डिजिटल मीडिया के कई दिग्गज एंकर्स के अनुभव का खजाना इसी आकाशवाणी के स्टूडियोज में गढ़ा गया है। इन्हीं में से एक बेहद सम्मानित नाम है अंग्रेजी के मशहूर एंकर और न्यूज रीडर सुनीत टंडन। आइए सुनते हैं उनकी सफर की कुछ अनसुनी यादें।
3: As far as the news is concerned, the people who were in the greats who were.
4: समाचारों की बात करें तो उस समय समाचार कक्ष में कई बड़े नाम मौजूद थे। इनमें सुरजीत सेन, बोरुल हालदार, मनिका रत्नम और पामेला सिंह काफी बड़े नाम थे। ये उस समय के सबसे बड़े न्यूज रीडर हुआ करते थे, और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत अच्छे इंसान भी थे और दूसरों को बहुत प्रेरित किया करते थे। मैंने 1978-79 में समाचार कक्ष में समाचार पढ़ने की शुरुआत की। उस समय बोरुल हालदार हुआ करते थे, एक और न्यूज रीडर हुआ करते थे सुशील, जो काफी लोकप्रिय थे। वो अपने स्क्रिप्ट में पंक्चुएशन की मार्किंग नहीं किया करते थे, और जब लाइव पढ़ते थे तो जो लाइन पढ़ रहे हैं उसके नीचे की तीसरी लाइन में आकर वो मार्किंग किया करते थे। एक अनूठी शैली थी उनके पास। हिंदी समाचार कक्ष की बात करें तो महान देवकीनंदन पांडे जी हुआ करते थे, एक और सज्जन हुआ करते थे जो सफेद कुर्ते पजामे में आया करते थे, मिस्टर भादुड़ी। वो बहुत अच्छे उद्घोषक थे उस जमाने में।
3: Fabulous gentleman was always dressed in his crisp white kurtas. So wonderful people and great memories of that time.
2: वक्त के साथ आकाशवाणी समाचार ने सिर्फ बुलेटिन ही नहीं बदले बल्कि जनसंचार के स्वरूप को नया आयाम भी दिया। शुरुआत हुई न्यूज मैगजीन कार्यक्रमों की, सुबह की ताजगी के साथ आज सवेरे और शाम के ढलते सूरज के साथ परिक्रमा।
0: इन कार्यक्रमों ने देश के सुदूर इलाकों में बैठे क्षेत्रीय संवाददाताओं की ग्राउंड रिपोर्ट्स और संक्षिप्त रेडियो इंटरव्यूज के जरिए सीधे जनता की

0: आवाज को स्टूडियो तक पहुंचाया। चाहे आम बजट हो या रेलवे बजट की पल पल की बारीकियां, लाइव डिस्कशन प्रोग्राम्स हो या फिर देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों की मतगणना।
1: जब टीवी स्क्रीन्स नहीं थी तब देश का कोना कोना आकाशवाणी के साथ बैठकर चुनावी नतीजों के लाइव रुझान सुनता था। भरोसा ऐसा कि कोई उंगली नहीं उठा सकता था। इन कार्यक्रमों को शुरुआती दौर से अपनी आवाज से सजाने वाली और लंबे समय तक इनका संचालन करने वाली चंद्रिका जोशी इन ऐतिहासिक लाइव कवरेज के साथ उन रोमांचक क्षणों को याद करते हुए कहती हैं,
2: सबसे पहले चुनाव चर्चा रेडियो पर 1996 में हुई। बिल्कुल नया फॉर्मेट था, नया अंदाज, लोगों की और हमारे अधिकारियों की अपेक्षाएं थी, तो डर तो बहुत लगता था, घबराहट भी होती थी। लेकिन हाँ, उस समय ईवीएम नहीं होती थी तो देश भर से चुनाव परिणाम मिलने में करीब 2-2.5 दिन का समय तो लगता ही था और बड़ा उत्सव का सा माहौल रहता था ऑफिस में। बजट की चर्चा भी उसी दौर में शुरू हुई। तब आम बजट और रेल बजट अलग अलग आते थे। एक दो बार तो मुझे अच्छी तरह याद है कि बजट के तुरंत बाद रेल मंत्री और वित्त मंत्री जी से पहला इंटरव्यू हमने लिया था आकाशवाणी ने। बजट के बाद रात को रेडियो ब्रिज कार्यक्रम में सभी सेक्रेटरीज और पत्रकारों के साथ चर्चा के वो पल कभी नहीं भूलने वाली यादें हैं। रेडियो की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, समाचारों का भरोसा, हमारी विश्वसनीयता बनाए रखते हुए श्रोताओं की मांग पर ये सब बदलाव हो रहे थे और आकाशवाणी ने हमें नया करने के लिए बहुत मौके भी दिए। तो हम नौकरी में आने के बाद भी बहुत पढ़ते थे क्योंकि श्रोताओं का विश्वास जीतने के लिए आवाज के साथ साथ आपके भीतर का आत्मविश्वास उसके लिए बहुत जरूरी है। आत्मविश्वास तभी होगा जब आप हर वक्त हर समाचार से अपडेट रहेंगे, आपकी भाषा समृद्ध होगी और उच्चारण स्पष्ट होगा। तो हमने आकाशवाणी को आगे बढ़ते हुए, समृद्ध होते हुए देखा। पुरानी मशीनों और टेप में रिकॉर्डिंग और एडिटिंग, उसके बाद सीडी, फिर कंप्यूटर, ये सब दौर थे और सबका अपना अनुभव रोचक रहा। तो मैं कहूंगी कि 24 घंटे काम करने वाली इस जगह को अगर उस वक्त को समझना चाहें तो रुक कर कुछ पीछे तो देखना ही पड़ेगा। शायद 80 के दशक तक रेडियो में लोगों के सामने बहुत चुनौतियां रही होंगी। हम लोग 90 के दशक में काफी सुधार होने के बाद आए, लेकिन असल बात यह थी कि रेडियो की लोकप्रियता तब भी थी, आज भी है और आने वाले समय में भी हमेशा रहेगी, क्योंकि रेडियो आपको अपना काम करने देता है।
0: जब बात राष्ट्रीय गौरव की हो, 15 अगस्त और 26 जनवरी के राष्ट्रीय कार्यक्रमों का वो आंखों देखा हाल, तो हमारे कानों में कई बुलंद, जादुई और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाजें गूंजती हैं।
1: उनकी कमेंट्री महज शब्दों का बयान नहीं थी, वो साक्षात दृश्य को श्रोताओं की आंखों के सामने जिंदा कर देती थी।
3: नमस्कार, राजपथ से मैं लक्ष्मी शंकर वाजपेयी, अपनी साथी कमेंटेटर डॉक्टर जीतू राजपूत, जैनेन्द्र कुमार सिंह और मीनू खरे के साथ आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। भारत के इतिहास का एक अनमोल दिन।
4: हर हंसी खाब की ताबीर हंसी लगने लगी, एक नई सुबह ने धरती को संवारा। ऐसे
5: नगर बजो शस्त्र।
3: 2 मिनट के मौन के बाद राउस के धुन अर्थात पुनः आगे बढ़ चलने का संकल्प, अपने लक्ष्यों को हासिल करने का संकल्प।
6: दाहिनी ओर जो एक गेट बना हुआ है अर्धवृत्ताकार, उससे प्रवेश किया है प्रधानमंत्री जी ने।
7: और अब योग फॉर्मेशन का प्रदर्शन यहाँ पर 6 सदस्यीय टीम कर रही है और गुलदस्ता खूबसूरत सा फूलों का, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए ये जाबाज यहाँ से सलामी मंच से आगे निकलते हुए।
0: आकाशवाणी सिर्फ जश्न का साथी नहीं है, संकट की घड़ी में ये एक अपने की भूमिका निभाता है। जन संचार में इसकी भूमिका सिर्फ सूचना देने की नहीं बल्कि एक मरहम लगाने वाले हमदर्द की भी रही है।
1: याद कीजिए बिहार की वो भयावह बाढ़ जब सब कुछ डूब चुका था, संचार के सारे साधन लगभग ठप थी।

0: तब आकाशवाणी ने वहाँ एक ऐसा इंतजाम किया जिससे बाढ़ राहत, अपनों की तलाश और मदद की जानकारियाँ हर पीढ़ी तक पहुँचाई जा सके। इस मानवीय और रणनीतिक भूमिका पर रोशनी डाल रहे हैं आकाशवाणी के पूर्व अपर महानिदेशक आशीष भटनागर।
1: आईटी डिवीजन के अपने एक साथी वीआर हरी से हमने कहा, शायद गुरुवार या शुक्रवार था, कि हमें सोमवार को बिहार जाना है और हमें चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आईटी प्लेटफॉर्म जिसपे कि बहुत सारे लोग एसएमएस करें, वो सारे एसएमएस आए, वहाँ इकट्ठे हों, उसको फिल्टर हम अलग अलग ढंग से कर सकें और उसको हम फोन इन प्रोग्राम से जोड़ सकें और फोन इन प्रोग्राम के तहत हम जनता तक पहुंच सकें। एक तरीके से ये टेलीकॉम, आईटी और रेडियो ब्रॉडकास्टिंग तीनों की साझेदारी थी। इस दौरान हम अपने डायरेक्टर जनरल महोदय जयजी जयलाल जी के पास गए और उन्होंने बहुत उत्साहित होकर कहा कि तुम जाओ, मेरा पूरा सहयोग तुम्हारे साथ है, तुम जो चाहो वो करो। हम लोगों ने तय किया कि हम लोग 15 दिन वहां रहेंगे, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी भागलपुर और आकाशवाणी दरभंगा, इन तीन स्टेशंस का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे। उसके बाद तो पूरे स्टेशन के लोग, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे प्रोग्रामर हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के, सब साथ आके खड़े थे और वहां से शुरुआत हुई हमारी बात की। कैजुअल अनाउंसर्स की ताकत मैंने तब देखी, मुझे याद है मणिकांत झा नाम आज भी, हम लोग बोट्स के ऊपर, हर जगह पानी पानी था, दूर दूर जाते थे, कहीं थोड़ी सी जमीन दिखती थी वहां बहुत सारे लोग खड़े मिलते थे और जैसे हम पास पहुंचते थे तो एकाएक वहां पे चीक चिल्लाहट, अरे मणिकांत झा आइल छ, मणिकांत बाबू आए हैं। हमको इतना गर्व हुआ अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, एक पेड़ के ऊपर एक बच्चा टंगा हुआ मिला और कितने दिन वो पेड़ पे रहा, वो उसको कुछ हौसला देकर उससे बात हुई, उसकी बात की और रेडियो पर उस फोन इन प्रोग्राम पे ब्रॉडकास्टिंग किया गया उसके बारे में और उसके परिवार उसे मिल गया। इट वॉज एन इमोशनल अफेयर। एसएमएस का जो प्लेटफॉर्म, उस पर तमाम सारे लोग एसएमएस करते थे, मेरा बच्चा गुम गया है, मेरा पति गुम गया है, मेरी पत्नी नहीं है, बह गई है, उन सब एसएमएस को लेके हम लोग फोन इन प्रोग्राम पर बात करते थे और फिर लौट के हमारे पास एसएमएस या फोन आ जाते थे, अरे वो हमको वहां मिल गया। बाद में भारतवर्ष में 13 महत्वपूर्ण जो काम जो किए गए उस भारत सरकार के पब्लिकेशन में भी लाई गई, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया, इसके बारे में आर्टिकल्स लिखे गए। पर सच बताऊं तो इसका असली आनंद हम लोगों को मिला, वो फील्ड पे मिला। आकाशवाणी कितना मददगार है, जब कोई नहीं होता तो आकाशवाणी होता है।
0: नब्बे वर्षों का ये सफर गवाह है कि तकनीक के इस आधुनिक समंदर में, जहां आज सैकड़ों टीवी चैनल्स हैं, हजारों डिजिटल पोर्टल्स हैं और हर सेकंड खबरों की रील्स और शॉर्ट्स बदल रहे हैं, उस शोरगुल के बीच भी आकाशवाणी समाचार आज भी देश का सबसे शांत, सबसे गंभीर और विश्वसनीयता के शिखर पर बैठा अव्वल संस्थान है।
2: ये आज भी केवल एक ब्रॉडकास्टर नहीं बल्कि भारत की साख है। सोशल मीडिया के फेक न्यूज के दौर में भी देश इसी आवाज की तरफ देखता है, क्योंकि भारत जानता है कि अगर इस आवाज ने मुहर लगा दी तो वो सच है।

0: आकाशवाणी एट 90
1: 90 वर्षों का गौरवमयी सफर आकाशवाणी ने सिर्फ खबरें और सूचनाएं ही नहीं दी बल्कि उसने आजाद होते भारत के सपनों को अपनी आवाज दी और जब बात खेलों की आई तो एक नई सोच का जन्म हुआ
2: एक ऐसी सोच जिससे खेल के मैदान को स्टेडियम की चार दीवारी से निकालकर भारत के हर घर हर चौपाल तक पहुंचाया बिना तस्वीरों के सिर्फ शब्दों के जादू से करोड़ों आंखों के सामने लाइव मैच का थिएटर रच देना ये चमत्कार

0: आविष्कार सिर्फ और सिर्फ आकाशवाणी ने किया।
1: 60, 70 और 80 का दशक ये वो दौर था जब भारतीय हॉकी अपने चरम पर थी। आइए इतिहास के पन्नों को एक बार फिर पलटते हैं और चलते हैं साल 1975 के कुआलालंपुर में, जहां भारत ने हॉकी विश्व कप जीतकर इतिहास रचा था। सुनिए जसदेव सिंह की उस जादुई आवाज को।
2: और ये फ्री 25 गज की लाइन पर दाएं फ्लैंक में मिला पाकिस्तान के इफ्तिखार को, जिन्होंने हिट लगाया पास अख्तर रसूल को। अख्तर रसूल ने और गेंद भारत के डी में बाएं तरफ जहां पे चौकर ने है वहां पे पहुंच गया अब्बास भारतीय डी में और उन्होंने सेंटर की, लेकिन उससे पहले सुरजीत ने खूबसूरती से अजीत पाल ने गेंद अपने डी में से बाहर कर दी बाएं फ्लैंक में और ये खेल खत्म। भारत 2-1 से जीत गया। भारत विश्व हॉकी चैंपियन है। ये समाचार मैं मेलविल डिमेलो के साथ आपको कुआलालंपुर से देता हूं।
0: हॉकी के मैदान से निकलकर जब ये रोमांच 22 गज की क्रिकेट पिच पर पहुंचा, तो आकाशवाणी ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। वो दौर जब अंग्रेजी का बोलबाला था, आकाशवाणी ने देश की माटी की भाषा यानी हिंदी में क्रिकेट कमेंट्री की शुरुआत करने की नई सोच दिखाई।
1: और इस विधा के भीष्म पितामह बने सुशील दोषी।
3: बहुत ही मुश्किल काम था जो FPS सिस्टम का खेल क्रिकेट, जिसको 22 यार्ड से 22 गज से जो शुरू होता है, ऐसे खेल की हिंदी में कमेंट्री करना लोग मान रहे थे कि ये तो हो ही नहीं सकता। लोग कह रहे थे कि पूरा हिंदी में करना हो तो अनुवाद करिए, स्क्वायर लेग को वर्गाकार पांव कहिए या फिर मिड विकेट को मध्य विकेट कहिए या फिर सिली मिडॉन को मूर्ख मिडॉन कहिए, इस तरह की बातें होती थी और लोग ग्रहण करना शुरू में नहीं चाहते थे। लेकिन मैं तो आकाशवाणी को बहुत ही मानता हूं कि उन्होंने खेलों को अपने प्रसारण के जरिए जिंदा रखा। दो काम किए, एक तो खेलों को गांव-गांव तक पहुंचाया, गृहिणियों तक पहुंचाया, खेत में काम करने वाले जो खेतीहर किसान हैं उन तक पहुंचाया, मिल में मजदूर जो लोग काम करते हैं ना उन तक पहुंचाया, और सबसे बड़ी बात ऐसे लोगों को खेल को दिखाया अपनी आवाज के जरिए जो खेलों के बारे में जानते नहीं थे। तो खेल की शुरुआत ही क्रांति की शुरुआत में समझता हूँ आकाशवाणी के कारण ही। और दो बातें हुई कि खेलों को तो पहुंचाया पर साथ ही एक संस्कार, भाषा का संस्कार जो दिया आकाशवाणी ने, वो एक उसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। देखिए आज जिस तरह तरह की बातें हो रही है, इतने सारे टेलीविजन पर हम देखते हैं, जिस तरह की भाषा तोड़ी जा रही है उससे बड़ा दुख भी होता है, लेकिन आकाशवाणी ने इसके साथ कभी समझौता नहीं किया। क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों के जो चाहने वाले हैं वो भी आकाशवाणी का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। और मैं तो समझता हूँ कि आकाशवाणी ने वो काम किया जो संजय ने महाभारत में जो काम किया था। रेडियो ही एकमात्र माध्यम था, मुझे याद है कि एक पान वाले की दुकान के आगे 500 लोग खड़े हो जाते थे और पूरी बातें सुनते थे। कि खेलों की जो क्रांति आकाशवाणी ने जो काम किया उसका ये देश शुक्रगुजार तो रहेगा ही, लेकिन उनका कर्तव्य भी था, उन्होंने अपने कर्तव्य को पूरे ढंग से निभाया।
0: आकाशवाणी की इस कमेंट्री की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि इसने सिर्फ खेल को घर घर पहुँचाया ही नहीं, बल्कि देश में खेल के प्रति एक ऐसी दीवानगी पैदा की जिससे नए टैलेंट को जन्म देना शुरू किया।
1: कुछ ऐसे दीवाने श्रोता भी थे जो रेडियो सुनते सुनते खुद इस विधा के उस्ताद बन गए। ऐसा ही एक नाम है कुलविंदर सिंह कंग।
4: मैं 1980 में आकाशवाणी में आया, उससे पहले मुझे याद है सन 1976 का मॉन्ट्रियल ओलंपिक जो कि कनाडा में था, उसका फाइनल मुकाबला रात के तकरीबन 2:30 बजे मैंने आकाशवाणी पर सुना। उस वक्त मैं श्रीगंगानगर में था क्योंकि कनाडा में उस वक्त दिन था, भारत में रात थी और फाइनल मुकाबला न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ था और पहली बार और एकमात्र बार न्यूजीलैंड ने उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था। तो ये जो ऐतिहासिक पल आकाशवाणी ने दिए हैं मैंने भी उसको जिया है और उसके बाद मुझे भी आकाशवाणी की तरफ से उन ऐतिहासिक पलों की कमेंट्री करने का मौका मिला जो कि आज इतिहास में दर्ज है। चाहे वो मुल्तान में वीरेंद्र सहवाग के 300 रन बने हों, पहले भारतीय बैटर बने और वो 300 रन उन्होंने मेरी कमेंट्री में ही सकलन मुश्ताक को मिड विकेट पर छक्का मारकर पूरे किए थे। मुझे याद है 13 जुलाई 2002 नटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल लॉर्ड्स के मैदान पर, जहां भारत ने 326 रन बनाए थे, युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ की साझेदारी के बाद भारत वो जीता था। मुझे अंग्रेजी कमेंटेटर सुरेश सरैया जी के साथ उस मैच का लॉर्ड्स के

0: से आंखों देखा हाल सुनाने का मौका मिला था। ये वो बातें हैं, वो पल हैं जिसका कि मैं हिस्सा बना।
1: आकाशवाणी का योगदान सिर्फ लाइव मैचों तक सीमित नहीं रहा। खेल खिलाड़ी, खेल सेवा, स्पोर्ट्स स्कैन या 5 मिनट के खेल बुलेटिन, ये वो कार्यक्रम रहे जिन्होंने खेल जगत की हर छोटी बड़ी खबर को देश के कोने कोने तक पहुंचाया।
2: इन कार्यक्रमों में बतौर प्रेजेंटर और एक्सपर्ट जुड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेडल जीतने जैसा था। स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टिंग के जाने माने नाम मलय नीरव अपना अनुभव कुछ यूं साझा करते हैं।
3: अगर मैं याद करूं कुछ चीजें, तो जिस आकाशवाणी को सुनते हम बड़े हुए थे, जिन जो बड़े नाम हमारे सामने थे, जसदेव सिंह, रवि चतुर्वेदी, मनीष देव, सुशील दोषी, सुरजीत सेन, सुरेश सुरैया, ये वो लोग थे जिनसे मुझे मिलने की बचपन से ही बड़ी तमन्ना थी। और बाद में मुझे कहते हुए बहुत हर्ष और गर्व का अनुभव हो रहा है कि जसदेव सिंह के साथ जैसे कि मैंने कार्यक्रम पेश किया, रवि चतुर्वेदी के साथ मैंने एक्सपर्ट कमेंट्स में कई बार हिस्सा लिया। तो मैं अगर आकाशवाणी की यात्रा, खेल यात्रा पर नजर डालूं, तो 1964 में पहली बार जब हॉकी ओलंपिक्स में हॉकी की कमेंट्री हुई जिसमें डिमेलो और जसदेव सिंह थे, उसके बाद क्रिकेट कमेंट्री आई और फिर नरोत्तमपुरी का जमाना आया, डिक्की रत्नागर, और सबसे पहले तो तलियार खान साहब थे जिन्होंने कमेंट्री की परंपरा शुरू की। तो इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा। आकाशवाणी के जो खेल कार्यक्रम होते थे, खासकर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम, जिसमें दिन भर के खेल खबरों का लिखा जोखा रहता था, तो ये आकाशवाणी का एक ऐसा योगदान है जो मुझे कहते हुए बिल्कुल कोई हिचकिचाहट नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां और अंतर्राष्ट्रीय समाचार संस्थान, मैं सबका नाम तो नहीं लूंगा लेकिन मैं अपने समाचार संस्थान का नाम ले सकता हूँ, बीबीसी में भी हम लोग हमेशा आकाशवाणी के खेल कार्यक्रम पर नजर रखा करते थे।
2: सिर्फ क्रिकेट या हॉकी ही क्यों, एशियन गेम्स का रोमांच हो, राष्ट्रमंडल खेलों में तिरंगे का शान से लहराना हो, या फिर खेलों का महाकुंभ ओलंपिक, आकाशवाणी ने हर पल को देश के साथ जिया है।
1: निशानेबाजी जैसे खेल जिन्हें लंबे समय तक आम दर्शकों से दूर माना जाता था, उसकी बारीकियों को, उसके नियमों को और खिलाड़ियों के संघर्ष को आकाशवाणी ने सीधे श्रोताओं के दिलों तक उतारा। पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता अंजलि भागवत यादों को कुछ इस तरह साझा करती है।
4: आकाशवाणी बचपन से हमारा रूटीन का एक हिस्सा रहा है। मेरी माँ पहले आकाशवाणी सांगली केंद्र में गाया करती थी, तो सुबह उठते ही पहले ही सारे गाने हम सुनते थे। बहुत अच्छा लगता था वो माहौल घर का, सुबह का बनना। 88 वॉज माई फर्स्ट नेशनल, तो तब तो ऐसे कोई इतने सारे चैनल्स और वो कुछ नहीं था, तो आकाशवाणी यही हमारे प्रोमिनेंट चैनल्स थे। तो तब बहुत सारी मेरी इंटरव्यूज आकाशवाणी में हुई है। मैं आकाशवाणी केंद्र वर्ली में बहुत बार जा चुकी हूँ। आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ जाने की और जो भी मेरे एक्सपीरियंस है वो शेयर करने की, क्योंकि आकाशवाणी ऐसा माध्यम था उस वक्त जो हर घर तक पहुँचता था। जो भी मेरा शुरुआत का जो अचीवमेंट्स है वो लोगों तक पहुंचने में या लोगों तक पहुंचने के बाद शूटिंग लोगों को पता चलने में आकाशवाणी में, मतलब मैं उनको क्रेडिट देती हूँ या उनका बहुत उसमें कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि ये खेल बहुत नया था हमारे वक्त।
1: आज का दौर खेलो इंडिया गेम्स का है, नेशनल गेम्स का है। आज भी जब देश का कोई खिलाड़ी मैदान पर पसीना बहाता है, तो आकाशवाणी अपनी रेडियो रिपोर्ट्स, पल पल की अपडेट्स और पॉडकास्ट के माध्यम से देश के करोड़ों खेल प्रेमियों को उस रोमांच से जोड़े रखता है।
2: समय आगे बढ़ता है, पीढ़ियां बदलती हैं, तकनीक नए रास्ते बनाती है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ और गहरी होती जाती हैं। आकाशवाणी की आवाज भी एक ऐसी ही विरासत है जिसने देश को खबरों से जोड़ा और खेलों के रोमांच को घर घर पहुंचाया। कभी किसी ऐतिहासिक समाचार की गूंज बनकर, तो कभी आखिरी गेंद तक सांसें थाम देने वाली कमेंट्री बनकर। आकाशवाणी के इन 90 गौरवशाली वर्षों का हार्दिक अभिनंदन।

रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष के उपलक्ष में अप्रैल माह से प्रारंभ तीन कड़ियों की श्रृंखला में तीसरा और अंतिम रूपक आकाशवाणी, जहां खबर मिली और खेल खिला। आलेख आनंद श्रीवास्तव, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा और आनंद श्रीवास्तव, स्वरांश सहयोग आकाशवाणी संग्रहालय और प्रसार भारती संग्रहालय, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: आकाशवाणी है। नमस्कार, रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आपका स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है विद्वान श्री एम एस एन मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन।
1: दिस इज आकाशवाणी। गुड इवनिंग लिसनर्स, वेलकम टू रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। Tonight we present a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri M.S.N. Murthy.
0: Sri M.V. Subbarayudu aur Srimati M. Jalajakshi ke putra Sri M.S.N. Murthy sangeet ke pariveesh mein hi pale bade hain. Aapki mata Srimati M. Jalajakshi swayam ek sangeet kalakar rahi hain. Aapne sangeet ki shiksha sangeet sahitya kala nidhi गुरु श्री एनसीएच कृष्णमाचार्युलु के पास प्राप्त की। बाल कलाकार के रूप में ही आपने अनेक मंचों पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। विद्वान श्री एमएसएन मूर्ति ने कई प्रतिष्ठित संगीतज्ञों के साथ विभिन्न मंचों पर वायलिन संगत किया। इतना ही नहीं, आपके वायलिन एकल प्रदर्शन के लिए आपको समालोचक प्रशंसा भी प्राप्त है। आपने राष्ट्रीय एकता संगीत कार्यक्रमों के तहत हिंदुस्तानी संगीत कलाकारों के साथ जुगलबंदी कार्यक्रम में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। कई प्रतिष्ठात्मक संस्थानों ने आपकी कला को निदर्शनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन माना है। आप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के पैनलबद्ध कलाकार भी हैं। आपने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठित मंचों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया है। आकाशवाणी के स्टाफ कलाकार रह चुके श्री एमएसएन मूर्ति को वायोलिन में टॉप ग्रेड, कर्नाटक गायन और वायोला वादन में ए ग्रेड प्राप्त है। आपको कई प्रतिष्ठित मंचों द्वारा कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज के कार्यक्रम में श्री एमएसएन मूर्ति की संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकट रमण मूर्ति, गटम पर विद्वान श्री एम हरिबाबू और सहायक वायलिन पर श्री साकेत पंतुला।
1: श्री एमएसएन मूर्ति's exposure to music began early. His mother, Srimati M. Jalajakshi, is a veteran vocalist. Recognized as a child prodigy, Sri MSN Murthy trained under the guidance of Sangeet Sahitya Kalanidhi, Sri NCH Krishnamacharyulu. He served Akashvani Vishakhapatnam as a staff artist for 2 decades. A versatile musician, Sri MSN Murthy has the rare distinction of having top grade in violin, A grade in vocal, and an A grade in viola of Akashvani and Doordarshan. Sri MSN Murthy's music is recognized for its amazing and silky smooth, yet crisp and pure tonal quality, fine aesthetic sense,

0: श्री एमएसएन मूर्ति की अगली प्रस्तुति है अमृत वर्षिणी राग में मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचना आनंद अमृत आकर्षिणी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: श्री एमएसएन मूर्ति नाउ प्रेजेंट्स अ कृति ऑफ मुत्तुस्वामी दीक्षितार इन अमृत वर्षिणी रागम आदि तालम।

0: रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन। आपकी संगत कर रहे हैं मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू और सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। कार्यक्रम को जारी रखते हुए श्री MSN मूर्ति की अगली प्रस्तुति है हर हर प्रिय राग में संत त्यागराज की रचना चक्कनी राज मार्गमु, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: इन टुनाइट रविवासरिया अखिल भारतीय संगीत सभा यू हैव बीन लिसनिंग टू अ वायलिन रिसाइटल इन कर्नाटिक स्टाइल बाय विद्वान श्री MSN मूर्ति। ही इज अकंपनीड बाय विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति ऑन द मृदंगम एंड विद्वान श्री M हरिबाबू ऑन द घटम। Violin support is being provided by Sri Saket Pantula. Continuing this evening's concert, Vidwan Sri MSN Murthy will now present Chakkani Raja Margamu. It is in Kharhara Priya Ragam Aditalam and is a composition of Saint Tyagaraja.

0: यह था तन्यावर्तनम, जिसे मृदंगम पर प्रस्तुत किया विद्वान डॉक्टर वंकायला वेंकट रमण मूर्ति ने और घटम पर विद्वान श्री एम हरि बाबू ने। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति है खमास राग में धर्मपुरी सुब्बा रायर द्वारा रचित जावली मरुबारी से, जो कि आदि ताल में निबद्ध है।
1: That was Taniyavartanam on the Mridangam by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramanamurthy and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Sri MSN Murthy concludes this evening's concert with Marubari, a javali of Dharmapuri Subbarayar. It is in Khamas Ragam Aditalam.

0: अभी तक आप रविवासरी अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम में विद्वान श्री MSN मूर्ति का कर्नाटक शैली में वायलिन वादन सुन रहे थे। आपकी संगत कर रहे थे मृदंगम पर विद्वान डॉक्टर वंकायल वेंकटरमण मूर्ति, घटम पर विद्वान श्री M हरिबाबू, सहकार वायलिन पर श्री साकेत पंतुला। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के विशाखापट्टनम केंद्र में ध्वन्यांकित किया गया।
1: With this we come to the end of tonight's Ravivasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha, wherein we presented a violin recital in Carnatic style by Vidwan Sri MSN Murthy. He was accompanied by Vidwan Dr. Vankaila Venkata Ramana Murthy on the Mridangam and on the Ghatam by Vidwan Sri M. Haribabu. Violin support was given by Sri Saket Pantula. This program was recorded earlier at the studios of Akashvani Vishakhapatnam.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की आठवीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इजराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को

रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।